अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज।

मंदल बाज जाए, मंदल क्या है टोल नू, एक टोल बजता है जदो मड़िया हुंदा है, जदो बदल गरजदे ने सावण दे महीने बरसात पैंदी, पर जद परमेश्वर दा मेल होवे गुरु मेल करावे ते फिर अनमड़िया मंदल बाज जाए, बिना मड़िया होया ढोल वजन लग पैंदे, बिन सावन कानहर गाजे बिना सावन दे बदल गजन लग पैंदे, बादल बिन बरखा होई बिना बदल दे बरसात होन लग पैंदी है, बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई, ए गल हसन वाली ने विचार दी है। जद परमेश्वर दा नाम अंदर वस जावेगा, परमेश्वर दे नाम दा टोल वजेगा, ते फिर जिहड़े विकार ने ए अंदरों भज जाणगे, टोल वजे ता छोटे मोटे खड़ाक सुनाई नहीं देंदे, परमेश्वर दे नाम दा टोल अंदर वजेगा ते विकार दुबदा ईरखा ए भज जाएगा, बिन सावन कन हर गाजे परमेश्वर दा नाम वसेगा ते अंदर बरसात होवेगी, केड़ी नाम दी बरसात, बादल बिन बरखा होई नाम दी बरसात वास्ते बदलां दी लोड़ नहीं पैंदी, जो तत बिचारे कोई, भगत नामदेव जी कह रहे ने, अगर इस दी विचार करोगे ते फिर तुहाडा जीवन उच्चा हो जाएगा, अंदर नाम वसेगा दुविधा ईरखा भज जाएगी, और हर वेले नाम दी बरसात होवेगी, भाव हर वेले तुसी परमेश्वर दा

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहे जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहे है पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे। ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश दिंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं।

सूरज चढ़े, कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तां भी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच हुंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावां, अपने सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना, दूसरे नूं दुख देना, ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहेगुरु है, जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया तां इस चाननी दा क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

बगैर परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु का उपदेश सुनते ने फिर इस कहानी नू जान लेंदे ने कि सारे विच

ओने दोनों पेटावा कठिया कर लेंगे। कार आके अधी अधी तेरी कर ली। होता कहन लगा ए तेरे वास्ते ठीक नहीं, जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू ले, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हन सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के पानी दे विच रहण वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनों भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच पटकदा पटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा और इस गल दा बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दित्ता है। ने भगत पर माया विच आ गई और माया ने दोनों नू भगती दे थां तू थले सुट दिता। समा आया दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे। गजपत पार उतारे अनेकां शब्दां विच इस साखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, यह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंबदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी, ए ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिले और हौली हौली ए हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे एदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनी तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू कीता। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा
ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕੁਝ ਪਿਛਾ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਤੰਦੂਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ

मेरी चिंता मिट गई है और ना मैनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी, इस लई कि तू मेरा सारियां थावां ते राखी करना, सारियां थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालक सतगुर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच कहा कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। एक कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला, जिहड़ा है ही बेगुरा, वह कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलो अमृत ही नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उनू अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां वी माण करिए ना सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितार दे अवगुण को न चितार दे गल सेती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो नू इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया आपस विच। सांझी गुरु नाल

दस बाल तन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी माज दी वार विच आप बख्शिश करदे हन के दस साल बचपन दे बीत जांदे हन, बीस रमण, जवान हो गया, हुण घर दे सामान कठे करन विच लग गया। तीसां का सुंदर कहावे, चाली सी पर होए पचासी, चाली ते पंजा साल दी उम्र तक इसने रात दिन एक करके अपने कार विहार तंदे कीते, पर परमेश्वर दे नाम दा कोई ख्याल नहीं कीता, नहीं उदा शुकराना कीता जिस वाहेगुरु ने अमोलक स्वास बख्शे सन। हुण पंजा साल तो उत्ते जदों उम्र हो गई, बुढ़ेपा आ गया, सत्रां दा मत हीन

घोड़े ते सवार होके जालमां दी मौत बन के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नूं नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ़ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दिता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर हमला बोल दिया।

कबहू ना डरो। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे शुभ कमां तों पिछे ना हटिए, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने, दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई, मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही ओनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी ओनू छड़ देवांगे, केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं ओ मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लगोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार किया। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नू देखदे हुए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे।

बड़े ही गहरे जाके, बड़े ही गहरी विचार विच जाके प्रमाण कीती है। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा है, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा लै रहे हैं, और प्रदक्षिणा लैके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया, देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे लै रहे हन।

मगर पाईसा पाई गुरुदास जी जेड़ी रमज तक पहुंचे कहंदे ने दोनों ही अपने अपने असूल ते कायम। ते ए जानदे होए भगवान कृष्ण कि सुदामा अपनी जबान तो मंगेगा नहीं, ते भगवान कृष्ण ने बड़ा प्यार कीता, परदखना लई पैरी पै के गले लगाया और उदे चरण तो के उसनू अपने सिंघासन ते बिठाया। ते सिंघासन ते बिठान तो बाद उसनू बड़ा प्यार कीता, इतना प्यार कीता। ते प्यार करन तो बाद भगवान कृष्ण कहन लगे, सुदामा बचपन तो हुण जवानी आ गई है, इतनी उम्रा हो गई है, बड़ा चिर होया है मिलिया नू, कोई गुरु दी सेवा दी कथा सुना। गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता दर्शा रहे हन कि गुरु दी सेवा दी कथा करन नाल गुरु याद आउंदा है, गुरु याद आउन नाल गुरु दा दस्या होया नाम याद आउंदा है। ते गुरु दा नाम याद आउन नाल जदों नाम दसम द्वार दे विच टिक जांदा है, एकागर चित मन हो जांदा है। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन, कहंदे हन उस वक्त जितने भी पिछले माड़े कर्म हन वो सारे दे सारे कटे जांदे हन। भाई साहब फरमान कर रहे हन गुरु दी सेवा दी कथा दी महानता। ते गुरबाणी विच भी स्वामी रामानंद जी महाराज दा एक शब्द है। ये स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब दे भी गुरु होए,

उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल जोड़िया। इन्हां दी बाणी दा शब्द है कि शब्द की है, शब्द किस तरह कोट कर्म करोड़ा ही माड़े कर्मा दा नाश करदा है। स्वामी रामानंद

कोई जोगियां दे पिछे पिया, कोई सिद्धां दे मगर लगिया है। परमेश्वर दा नाम सारिया नू विसर गया सी, पाप विच रुझिया होया संसार। जदों अपने बड़ाए हुए संसार की ए हालत वेखी निरंकार ने, कि मेरी बनाई हुई सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईरखा द्वेष की अग विच जल रही है, ता निरंकार ने गुरु नानक दा रूप बनाया। गुरु नानक दा रूप तार के संसार ते जगत जिया नू तारन वास्ते आ गया।

मैं ता कालू दे घर माता त्रिप्ता दी कुख चो जदो जन्म लिया दौलतां दाई ने वेख्या के जिस कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है वो सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है और जिवें हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां जय जयकार दियां आवाजां आ रही है और एक ऐसी महक उस कोठड़ी विच प्रकाश उस कोठड़ी विच जिस वेले ए बालक ने जन्म लिया आ जन्म लेंदियां ही आ बालक मुस्कराया हैरान रह गई दौलतां दाई मेरे हत्थां विच अनेक बालक पैदा होए लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है दर्शन पा के दौलतां दाई तन हो गई सत सिंह बोलो श्री बधाई दीती से बार आई कोठरी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायो तोड़े कर ता कोई अनोखा ही बालक जन्मे जिस दे जन्म लेंदिया ही सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई जय जयकार दियां आवाजा आ रही चारे पासे सुगंधी फैल गई है मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तोड़े घर आया है सासो बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता मेहता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक होया ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार कर पंडित हरदयाल उठ के बैठा मेहता जी नू बिठाया कोल कालू जी नू मेहता कालू नू कोल बिठाया पुछया कितने बजे होया बालक आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब पढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मैनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हो मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं ए ता परमात्मा दा रूप है सत सगत बोलो श्री ए प्रभु दा रूप है मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रही अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है प्यारी सात संगत आ बालक पता है कौन है ए बालक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा पातशाह है सात सिगत बोलो श्री और जन्म किथे लेता आखे तीन बेदियन की कुल बिखे तीन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दे जै ते भय सहाय आज बेदियां दी कुल विच गुरु नानक ने आके जन्म लिया और इस कुल नू धन कर दिता इस वास्ते गुरु अर्जन

निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद अजूनी सैभंग गुर प्रसाद तक जदो आवाज आई ता गुरु नानक सच्चे पातशाह दी समाध लग गई। आवाज आई ऐ नानक की कर रहे हैं ता गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे निरंकार जो उपदेश आपने मेनू दिता है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच हे निरंकार तू आद विच भी सच जुगाद विच भी सच है हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। हे उपदेश लेता इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेही नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया कि गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया बेबे नानकी दे कोल आया कहन

तारों तारते हुए हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जदों पवित्र धरती ते पहुंचे ते की वेख्या उत्थे दे लोग कर्म कांडां विच पए होए। एक पंडित सूरज वल मुंह करके ते गंगा जल पाई जाऊं ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वल करके पंडित जल दे रहा है सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सतसंगत बोलो श्री जी। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है तुसी जल उस पासे पा रहे हो। तुसी जल उस पासे क्यों पा रहे हो तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच मैं उना नू पानी पा रहे खेती नू। पंडित कहन लगा कितनी कु दूर है आख्या कोई 400-500 मील होना इत्थों। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी ओ खेतां तक पहुंच जावेगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच सकदा है तां क्या साडा पानी करतारपुर खेती तक नहीं पहुंच सकदा। पंडित जी कर्म कांडां विच कुछ नहीं जे पिया जे परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडां विच पोगे तां इना कर्मा कांडां ने तुहाडा उधार नहीं करना। उधार तां प्रभु दे नाम ने करना। सत सिखत बोलो श्री। बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरा वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या करदे सन भाई आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना ये सारियां सिफरां हन सिफरां ये सारे जीरो हैं और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मूल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे। जे एक पावेगा एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाए। दो जीरो पावेगा सौ तीन पावेगा हजार। इसे तरह दुनिया दे जितने कर्म कांड हन जप तप हन बिना नाम तो जे ए करेगा ता तेरे मन नू हंकार हो जाएगा और कीते हुए तेरे कर्म सारे नाश हो जाएंगे। जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्म कांडा दा वही मुल पैणे। सतसंगत बोलो श्री। जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करता है कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच कहंदे हन प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका मैं अनेक कर्म करके वेख ले हन लेकिन एक प्रभु दे सिमरन तो बिना इस जी दे नाल किसे ने नहीं जाना। साथ सगत बोलो श्री। जद ऐसा सच का उपदेश पंडित जी नु दिता बहुत संगत उथे आके गुरु नानक दे दर्शना ते जुड़ गई।

पंडित जी, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो पता नहीं कितने श्वास हैं बाकी कितने नहीं। आप भरोसा तो एक पल का भी नहीं, इतना भी भरोसा नहीं कि जेड़ा श्वास असी छड़े है, पता नहीं वो वापस आउंदा कि नहीं आउंदा। सत सगत बोलो तेरी। इस वास्ते नहीं भरोसा इस जीने का, ऐसा सच का उपदेश जदो उस बच्ची ने सुनिया कि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो अगा हो के जिथे गुरु नानक सच्चे पातशाह बैठे सन, उस बच्ची ने जाके जदो गुरु नानक सच्चे पातशाह दे चरणा ते सिर रखिया, गुरु नानक दे चरणा दी शो पा के उस बच्ची दे कपाट खुल गए, कपाट खुल गए, ज्ञान हो गया कि मैं किस वास्ते संसार ते आई और मेरा मनोरथ की है। ऐसा सच का उपदेश गुरु नानक ने दिता उत्थे संगतां नूं के भाई एक परमेश्वर दे नाल जुड़ो, एक प्रभु दा सिमरन करो, उस सिमरन ने ही तुहानूं इस संसार सागर तो पार करना है। ए उपदेश जदों सुनिया ए बच्ची भी ए उपदेश पल्ले बन के लै गई और गुरु नानक

पूछा बादशाह बड़ा आदमी कौन है जिसकी बहुत सी कारें हैं, जिसकी बहुत फैक्ट्री है, जिसके बहुत से बंगले हैं? नहीं, जो संगत के अंदर आकर अपने अहंकार को छोड़ता है वो ही सबसे बड़ा इंसान है।

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया ते मैल नाल पारा भी हो गया। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला होआ स्याओ फिर तरेगा किवें मैल नाल ते पारा हो गया।

जे तरना है भवजल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओ ही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जद मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा।

सच वंडन वाला, सच दा प्रचार करन वाला, नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे। भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, चढ़िया सोधन धरत लुकाई, भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक। कहन लगे मरदाने आ चल, तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा, लेकिन ओदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना, मैं सच्चे नू रिझा लवांगा, ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावा। तो लंबे दी धरती नू तार दे गरीब नवाज पातशाह। उथे लागे एक नगरी, एक हवेली लागे जाके गरीब नवाज पातशाह।

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़िया बहने गुरमुखा फिर अस चलते बनने। पर भोजन ता कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे कर देने, जथा शक्त सेवा भी कर दा। ए आज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलता है। सतगुरु कहन लगे पे फिर ता तेनु कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम कर दे हो तुसी। जिस वेले आखिया ना की कम कर दे हो, कदे अपने वाल वेंदा है, कदे बाबे वाल वेंदा है।

चोर की हम परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए हैं। बाबा जी खुश होए हैं तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कहन लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकता।

मन विच ख्याल आ गया भाई चलो राजे नू चल के लुटने आ, वो केड़ा गरीब है। शाही पोशाक पहन ली, घोड़े ते चढ़ बैठा ते रात राजे दे महलां नू तुर पिया। रस्ते च सिपाही ने रोकिया, भाई तू कौन है, इस वेले किथे जा रहे हैं? ते बाबे दा बचन चेते आ गया, पे सच बोली, मैं पूछिया तू कौन है? कहंदा तेनू नहीं दिस रहा मैं कौन, मैनू नहीं दिस रहा तू कौन, मैं चोर हां। हुण पहरेदार सोचण लगा भी चोर भी कदे कहंदा मैं चोर हां, ए राजे दा कोई खास निकटवर्ती होना, ते जे मैं रोक लिया तो सवेरे होर ना कोई बिपता खड़ी हो जाए। जा भाई नंग जा, जा अंदर वड़िया, दीवे बुझा दिते, हीरे जवाहरात पुखराज नीलम सोना चांदी पांड बन ली। बंदे दा मन बड़ा लालची, होर वेंदा पर कुछ होर मिल जाए। हनेरा सी, हाथ मार दें मार दें, टोंदे हैं टोंदे हैं, किसे गिल्ली जी चीज नू लगा ते वो जबान नाल लाया ते ओदे विच लून सी। बाबे दा बचन चेते आ गया पे लून खा के हराम नहीं करना। भाई साहब ने एक बड़ी सुंदर बात कही है।

कृपा भई ठाकुर कीर्तन हर हर गाई हर दिन रैन कीर्तन गाई है। गरीब नवाज पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज उन्होंने कीर्तन दी महा

कीर्तन हर हर गाई, कीर्तन ने ऐसा रंग चाढ़े कर्म खुल गया, कर्म जाग पे। किसे बंदे नू मालिक दी महान बख्शिश होवे ते असी कह देने भाई ये भागशाली है, ये कर्मा वाला है। गुरु महाराज पातशाह कहंदे ने कर्म जागे, कर्म खुलिया, पर खुलिया किवें? मालिक दा कीर्तन गाउण नाल।

अपनाया बजार सर्व कला प्रभुर दी सहगत कथा नानक दासन दास तुद आगे गुणवता सुनो पौन गुरु पाणी।